0: आकाशवाणी इंफाल हौजिक मणिपुरी दमरो एब पाओ ताबिरसे
1: आकाशवाणी इंफाल हौजिक फबगी मरो एब पाओ फासन की बक कुकी मिसम असोयंगाम याउतना थादोर की बा अदुबु कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंग बा कैसाम मेगेसन रसिंग ना थागा पफोंगदोरली सोशल मीडिया पोस्ट अमद महांग हाई फाजिंग की बन नगा मिसम सिंगचु मियोबिगी मिनुंसी येंग लगा अतुबु मतमदा थादोक नबो खोनागा दबनी मियोबिगी पुंसी हैबिसी याम नतांगी मरमदुना थौदोक असिद सेनारिबो सिंगना फाजिलिब मियोसिंग असोयंगाम याउतना मखोय मखोय की इमुंग मनुंगदा सिनाबिगा दबनी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लैबाक असिगी ओइना ख्वाइदिगी मतम सांगना ऑफिस पाइबा प्रधान मंत्री ओइरे महा कुमजाली सिंगनी तारा मरीगी मे कुंतरुकता वासक लौकिबनी भारत की आहानब प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ना नुमित लिसिंग मरी चहुम मरफुरानी पान ऑफिस पाइरमबगी मतम अदु हेंदुना भारत की इतिहास मियाम न खलब मतम सांगना फम असि पाइबा श्री मोदी ने ओइरे प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृभा अभियान की मखाद हौजिक फाउद मीरों मीनुपी कोटी तरह मखाई हेन कानब फंगे पोपद गायब आगामी चांग सिंथाई हंधाली नागालैंड हिदाक मना हिदाक मना की पोथोक चिंजाक थिंगनब पाइखलिब थौरांग अदु मपुंग फाना चननब नागालैंड की हकसेल याइफा युम्बाल मंत्री पाइवांग कोन्याक हाइरी असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर हार्वी डेल्फिन राइजदुगी मियाम पोथोलीब पोथोक येंखिंग्रे राइजदुर लेरीब यूरोपियन यूनियन की मिहुट कांगबु अदुना लमदम अदुगी मियाम पोथोलीब पोथोक अमदी अमन अमबु मतेंग पांगनबगी थबक थोरम सिंग मुख्यमंत्री गा येंसिंगके अवांग नोंपुगी राइजा खरद लाखलिब निमिन इनी असिदा मयाय ओरपतेगी कन नोंग चुरबयाय हरी मेट बिबांग हाई अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नोंगचु बेंगोल अमसुंग सिक्किम याउना लमदम असिगी मफों क्यादा नोंग चुगनी ओमान की समुद्र खोंबान मेयादा अमेरिका लानमी की अपाची हेलीकॉप्टर अमा कप्थकीबा अदुगी पाखुमदा यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ना ईरान की मफों क्यादा स्ट्राइक चथकरे अमेरिका की ऑफिशियल अमन हाई हेलीकॉप्टर अदु ईरान की ड्रोन सिंह कप्थकीबनी अदु मोइनमक पायलट अनी अदु असोय यांगाम याउदना कलहौरे अमसुंग फीफा वर्ल्ड कप लिसिंग अनी कुंतरुक हयेंगदेगी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अमसुंग कनाडा ना युम्बु ओइदना हौरगनी मथंग थागी तरा मापन फाव चथगदब टूर्नामेंट असिदा आहान बोइना टीम निफु निपाना सरु यारी पाउ लोइजरे
0: थौरम संदोकतुना ताहनजरी बसे आकाशवाणी इम्फाल गी एफएम संगाई चैनल दगिनी

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़, यार कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मथंगदलान थोकचरी रेखा भटवा चमती तोची रेनाद के गीत।

0: लोरे देना पुक्सेल दिशा नसी
1: ऐशु दिन लगा खा कनी ये तामो अदो ऐसे इमंग मनुंगी में खटपदा कंपनी की पैसा खरा पुथा करे अयाम बाबू दी बाबा ना बद संग बनी दा बाबा बु पाउथंग ना बाबू दी नते आइना मसा मो ने लोने होना फम थोक पने
0: खोदा होकी बिसिंग दु यम कने सु खंजलु न दु ला कदा ब ओय कदा ब द खने ग लोरे देना
1: अदो तामो पैसा कितना मतिंग पांग बियो कंपनी की फुकट के
0: तबाय पता बतो तुम हायो ऐसो पैसा यम पावी वादे न ती नुक्सी बगी पांगे है बनी को कया नो हायो
1: लिसिंग मंगा खकते ने
0: होय होय ने
1: अंधो हो रहे थी बाजार सामो मखों दा पुंग तरा दाई दे उन्हें से ऐ तमो ही रोम द लाग बतो पर अमता दो बोले रिंटो बनी
0: यह पुंग तरा चप चने हेलो
1: होय अंधो का असाद दिखाने बिनु को तमो ऐ कोई इन्हें मसिंग में लाए थम मगे तमो
0: कनो हेलो हेलो थम उंगरी ने
1: क्या हम कोई रे
0: तरह चुप सा नहीं
1: ऐ मिनी तरह मुक्ति एंकरे
0: कैसे कहते थे नुपी ना हान लादी तो कोई नायर का लेता है नुपा आखरे की मिंग संगी बजुए हो जी तीन अंग से मापान बुतों हनिंग रे मिंग तो हनिंग रे
1: करी क्या
0: नंग बुपान बा नुक्सी बे मिंग से मसिंग हंगर हनिंग रे
1: चिता की ती थोक जगह लो रे ने
0: हाँ चे लिसिंग मगा तो चंगवा हमें हिंग की बनी चिती हमें सुया बनी
1: याम नुंगाई जरे तामो
0: कैसे कभी उड़ा ना इंसान ना पी
1: अतु ती याम भाभी वाने
0: अतु स्वाइड होटल रेस्टोरेंट में मतलब आंटन पहुंचेरा
1: अतु ती नो मो पसंद आप हमसे नशी दी थिएंगा नहीं ये
0: याई ता याई
1: करी करी ले भी क्या हाय नो तामो
0: स्वाइड की थोड़ी बिसिंग चिदगी अपांग के ले जरे के इन्हें की मुकांगा सी मथा तो क्या �

شکریہ رومیتا. नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूँ थोक्सोम गीता, लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम गीत माला.

दोस्तों कहते हैं ना कि संगीत दिलों को जोड़ता है और आज के इस कार्यक्रम में आपकी पसंद सबसे ऊपर है तो हो जाइए तैयार क्योंकि खुलने जा रहा है आपकी फरमाइश आपके चहते कार्यक्रम का पिटारा। आज इस पिटारे में हम कौन कौन से फरमाइशी गीतों को लेकर उपस्थित हुए हैं तो वक्त जाया ना करते हुए सुनते हैं पहला फरमाइशी गीत फिल्म सागिर्द से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनना चाहते हैं हेंगांग मयालेकाई से बिजोई सना, जॉन, अनीता, डेनिस और सोनिया। तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अगला फरमाइशी है क्वाकेथिल से ओनाम चंद्रमणि कैनो थोंगाथक वार्ड नंबर 3 से सगोलसेम खाबा रामेश्वर और नामेराकपम नरसिंह आप सब की पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में दो बदन फिल्म से ये गीत गीतकार है शकील बदायनू और संगीतकार है रवि

इस गीत को पसंद करने वाले दोस्तों के नाम है खोंगजोम सापम से समरेंद्र हेक्रुजम और क्वाकेथिल कोंगजेंग लेकाई से गिब्सन सनासम इनुंगानबी पोरेंगानबी और लंचेनबी। फिल्म का नाम है रफू चक्कर, आवाज़ें दी थी शैलेंद्र सिंह और कंचन ने, गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अब सुनते हैं पासोई पार्ट फोर लाई हराबुंग से हिजेम हिजेम असेम और अतोम्बा की पसंद पर फिदा फिल्म से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मलिक।

दोस्तों अब सुनते हैं अगला फरमाइश. संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार है SH बिहारी और आवाज़ दी है शबीर कुमार ने. फिल्म है तेरी मेहरबानियाँ. पसंद करने वाले दोस्तों के नाम है लुकर पुरान हिनू मखोंग से W नंदो, सुशीला, सदानंदा, दिव्या, लक्ष्मी, पासोय पार्ट टू से याबुंग इनाउचा, जैनमेन जॉय, थियाम राम और कवा नावरम लेकाई से महेंद्रा, नंबोल से इबो चाउबा. तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म तेरी मेहरबानियाँ से.

आपकी फरमाइश का आखिरी गीत है सत्यम शिवम सुंदरम लता मंगेशकर की आवाज़ में. पसंद करने वाले दोस्तों के हैं खामिंग साबल लिकाई से कोरिंग चाओबा थोथोई संगीता तोम्बी और इनाओबी मयाए लंगजिंग से सनाहल और आकाश. आपकी पसंद पर सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से ये गीत.

दोस्तों इसी के साथ आपका फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है. दोपहर ढाई बजे फिर आपसे कंगला चैनल पर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.

0: आकाशवाणी इम्फाल हाउसिक मणिपुरी मरुआई पाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजे फाउगी मरुआई पाउदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार पायरप सही तरह निथोई मपुंग फारप भारत की ख्वाइदगी मतम सांगन थबक पायब प्रधानमंत्री ओरपग मरी लेनना केंद्रगी मंत्री मंडल नम हापो इगाय कुमनब उठपगी रिजोल्यूशन हम पास सोखरे अरंबम समरेंद्र लेखिदबगी सही कुंतरुक सुब कुमन थोरम कुमरी लेनंगसी इम्फाल ईस्ट जिला की पैलेस कंपाउंड लेब लम्यान बसमेंद मेमोरियल लेक्चर मपंग थोपली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस स्लोवाकिया की नुमित तरुगी खोचदे होगी माँ की खोचद की अहब सरुद नुमाइजुद फ्रांस की राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन का वफम कया खनगनी लेबा की कुमक चाखुरहब लुपा कोटी लाख

0: Western Music Tabiri, Akashvani Imphal, Hauzit Nungtil Gipung Ahum Tari, Manipuri Dapau, Tabirasi.
1: Akashvani Imphal, Nolini Debina Pau Pazari. Jal Shakti Mantralaya ga Manipur Sarkar ga Jal Jeevan Mission 2.0 hodoknaba yanawarol ama sahi tongnakre. Social media da thagalak pawarol ama da Mukhya Mantri Yumnam Khem San hai. Mission nasina khungang ki yumthong kuting da thaknaba phawai sing phangana ba pandam thamli. Arambam Samarendra Lake da bagi sahi kuntaruk subakuman thorong ka mari leina nangasi. Palace compound le ba lamyan besangnen da memorial lecture ma pangthokli. Arambam Samarendra Memorial Trust na Sinduna Pangthokpa Thorum Atuda, South Asian for Human Rights ki co-chairperson Dr. Rosmi Goswami na brainstorming on human rights, conflict resolution, ethnic relations amati grassroots feminism haibe hiramda lecture pigani. Pradhan Mantri Narendra Modi na sarkar parakpa sahitara nitoi mapung parakpa amati bharat ki khwaidegi matam sangna thabak paiba Pradhan Mantri oirakpa gamari leina na kendagi mantri mandal na mahakpo ikai kumnub okpa ki resolution ama pas tokre. Mipa madra wangang bada kendagi information and broadcasting mantri asini baishno na hai. Ngasi ki numit dun gi tang tara asi gana tantra zat paliba gasida khwaidegi sangna Pradhan Mantri oibagi anawade kod Pradhan Mantri Narendra Modi na thamkre. Sri baishno na hai.
2: आज कैबिनेट ने एक और संकल्प लिया. प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है. वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है. मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है.
1: निंगसिंग बेयाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमजा लिसिंगनी तरामरी की मे कुंतरुक्त वसकलौखी बनी. भारत के अहानबा प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नुवेट लिसिंग मरी चहुम मरपु तरा निपान ऑफिस पायरम बगी मतम अधु हेंदुना भारत के इतिहास दा मियाम ने खल्लबा मतम सांगन फम असी पाईबा श्री मोदी ने ओयरे. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ख्वाटी की मतम सांगन थाउपुबा प्रधान मंत्री ओयरकपदा मालेम की लुचिंग बा कया ना थागरबा फंगतु रखली. सरकार पार्टी पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की मिफम अमा हुजिक न्यू दिल्ली की भारत मंडपम द पंगथोकनी. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार पारकप सही तरह नितोई मपुंग फारकप अमदी भारत की ख्वाटी की मतम सांगना थबक पाइबा प्रधान मंत्री ओरकपगी मतांग दा पंगथोक दौरीप मिफम असिदा एनडीए ने शासन तोब राज्य मजुंग यूनियन टेरिटरी कुनिथोई की मुख्यमंत्री अमदी उप मुख्यमंत्री सिंह सरुग्या कनी. मिफम अदुदा लेबाग सि चाखोट हनपगी दम पाइखलिप प्रोग्राम सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम सिंह अमदी मोदी सरकार न कुमजा लिसिंगनी निफुतरे फावबदा लेबाग सि मपुंग फाने चाखोट पले बाग म ओहेना बा मीटिंग थमली बा दो नहोंना ने यंगसिंगनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस अमसुंग स्लोवाकिया की नुमितरुक निगी खोंगचत थांग जन नुमितगी होगनी. मा की खोंगचत के हान बेसरुकता नुमाइजु नुमित फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन गा लेबाकनी गी ओइबा वफम कया खनगनी. लुजिंग बासिना भारत इनोवेट चो होदोकनी. मा के अनि सुब खोंगचत ता थाजि की तरा मरी अमसुंग तरा तरुकता स्लोवा रिपब्लिक ते थुंगनी. भारत ननि खतम लब मतुंग द कुमजा लिसिंग मजमा पन मर पुतरा हुमदोगी मतुंग द भारत की प्रधानमंत्री अमना स्लोवाकिया टिचत पसी श्री मोदी ना हन बनी. ममक सही के अप्रैल थाता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया टिचत की. श्री मोदी ना स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको गा अनु विलम सिंह द तेंगबांग पीना नबा वफम कया खनगनी. लेबाग असि की खुंगंग चिंग चाखोदान बलुबा कोटी लाख अम लिसिंग कुनमंगा की थौरांग अमा केंद्र सरकार ने हुदोखरे. केंद्र की रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाय सरकार ने MGNREGA की मखादा लुबा कोटी लिसिंग कुंत्रा काई थोखरे. महान हाय राज्य सिंह मदि यूनियन टेरिटोरी सिंह द इंटरिम एलोकेशन ओइना लुबा कोटी लिसिंग मरपुतरा मंगा चाटु मरपुतरा नि थोई काई थोखरे. हौजि फाउबडा काई थोखी बसेन फमसि लुबा कोटी लाख अम लिसिंग कुनमंगा छुरे. वफमसी श्री सबराज सिंह चौहान ना विकसित भारत जी रामजी मपुंग फाने चनहनबगी मतांगदा स्टेट रूरल डेवलपमेंट मंत्री सिंह का वर्चुअल ओइन पंगथोक पमिफमदा फोंदोखिबनी. एक असी लेबाक सिंह बथुंगबदा मथंगथागी अमदगी सनबा हौरगनी. फीफा वर्ल्ड कप लिसिंगनी कुंतरु हयेंगदगी यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको अमजुंग कनाडा ता हौरगनी.

0: amaromda aka akum naina pungchat ta chatne chathok chasin tawduna leine nongpok nongchup khawang maikei pumnamaktagi yengbayai madu ururaga kabi nilakantana manipuri kabi khairakpam chaubabu ningchinglaki
1: maitai kabi khairakpam chaubana mahaki punsida ahanbo oina moirangda chattuna loktak pat yenglui mahakna pat adubu ahanbo uruba matungda ashumna saithaki
2: maitai gi patni mangna ngaliba aikhoi gi loktak haibase
1: madumakka manabadi natte adumna di oiraga kabi nilakantana niagara falls pu ahanbo oina uruba matamda magi pukningda phaurakhiba ihuldudi amatta oigani haina aibana phongdoksai
0: aibagi paudam matungina mafamduda lakliba tourist ayambana Niagara Falls po manak tilip tune yengliba aduna apin bawena de
1: kabi nilakantasu ipak ireel duda kumthaduna sangsin ningbagi ihulna ningthina sem saduna thamlaba hi duda kakhali man kakhluba hi dugi mamingna media of the mitch haina tholi adubu ai bana laisil nongphai gi loinavi haina maite londa handokli maduda tongbagi mamal pigadabani हे काखटपगा रेनकोट अममसु लिचिन हल्ली अशुमना लमकोइबसिंगन तोंगलगा साइथरकलिब इशिंगि मफोल मनाक यौना हि थौरांग तोब हौदुखिबसी ख्रिस्तकुम लिसिंगमग चनिपा निफुग तरुक्तनि मदुगुम्बा हि मरि लैहोई हि सिंगदो पिकतकन फजै
0: हिदु द तोंगतबा मिसिंग छुरबदा तपना तपना होनबा हौबदुना साइथरकलिब इशिंग मनाक यौना होनजेलि मनाक्तगी मनुंग अदुदगी मरक्ता इसिंग मरिक मरिक चंगलक्प मतांग दुददी महाक मपुनिंदा नुंशा थीरप तौरखी सुहाईजे मदुदगी दी कनादागी फॉल्स फाउजिंदुना होंदोरक्की
1: इसिंग साइबी मरक संगलुबा हीगी खोंसत अदो सौराक्न मिनिट कुनमुकी मतम ओइगनी आई वन खोंसत अदो कांगमलरोइदब खोंसत नी हाइन सिंगथारामी मसीद सुनते पुनसीद नुंगाइब हाइबदो अशिवाई मंगाइरे हाइन फाउब खनखी हाय संगलुब याद्रब कनाडा की नायगरा अमदी लंपाक सिंगसु मिताब मख येंगलमी हाय खोंचत असिगी यामन नुंगाइरिबसी सुमनगी नायगरा फॉल्स येंगलग लोइब नते पार्क की अकोइबद लेरिब मफम सिंगद काखत कुमथ तौदुना पुंग अमा अनी कोइदुना लेइब याय पिकनिक चटप याय योलिब मशक नाइब अचापोट लेदुन चाब याय सांगन वाकिंग चटप याय वारग पोथाननब मफम कया सु सिन थुंगन थौरांग तौदुन थमी पुंग अनी अहुमदि जगत की अवाब पुकनिंग की अवाब पुमनम काउथोक प याय अइगोंद फाउब शैरेंग की मये खरदि थोरई मये छेंग फात्रदुन इथोक पद मतम खर संखी
0: नायगरा फॉल्स की अकोइबद लेरिबसी अछि द नते डाउन नायग्रा फॉल्स हाइदुना इको इकोइना एक्वारियम म्यूजियम अचौबा कैथेल चिंग कया लेरी हप्ता अमरोम मफम दुद लेदुना पुमनमक तु येंगबदा मतम हौखिब खंग हौरोय हाइना आइबना फोंदुगले नवंबर दगी जनवरी फाउबदि दिवाली गोमना मई पुंगान गाले सही अमदा मफम दुद पांगथोकदब थौरम परेंग परेंग नमथोकतुना थमी अंगकप थौसिलनी नमित खुदिंगि पांगथोकननबा थौरमले नीतिगि येंबयाय असुमना आइबगि नोमगि नायग्रा खोंचत लोइरगा बफेलोद हलक्तुना धृत कुमारगिदा अहिंग अमगसु लमदन लमलगा मथंगि अयुक्ता मागि इमुंग मनुंगदा नुंसीना बिदाय लौरकलगा दालबिन्द हलक्कि मसिनी श्री एलांगबम नीलकांतगि नायग्रा फॉल्स येंगलोपकि क्वारी

गनो जगोया नहे जगोई शाबी लई शाबी ममई मको खंगे जगोई शाबी लई शाबी ममई मको खंगे मागी जगोयू।

0: ऐशु खरे यावगे
1: ताबिरे तंका कसी के वना मत मिसेदा लौखा चकिबा सैसक पसिंदी नोमाई टाइम सोलेंड्रो अमसों खेत्रमयुम बिसेसरी देबी लोयनाना पाउखोंग अमा चंगे हाइरिबा इसाया सिगे ओइना रुब्रा की सैसक पसिंग सैरेंगबा मथंग सिदना कैशाम बिजय कुमार अमसों बीजेंद्र कुमार शर्मा आकाशवाणी इंफाल पुंगफा मसीदा हौजिक संदोक चरी कपल ऑफ द मंथ

0: मखल मथिल कयागे थोरम संदोक तना ताहन चिरिबा सी आकाशवाणी इंफाल की मेगाहर्स जामा हम दस मित मंगा द संदोक चिरिबा एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक मखाता ब थोरम गिदम वाईखोंग पूर्णिमा द खुसिन चरी
1: थागा चरी रोमिता थोरम ना थोक तना ताहन चिरिबा सी आकाशवाणी इंफाल की संगाई चैनल दगिनी ताबिरिब पुमनमक पु तराम न उक्चरी खुरुम जरी थोरम मखा चथा जरक प ओइना हौजिक ताबिरसी ngai kho ta khisi

ट्राफिक कंट्रोल पुलिस विंग की कंट्रोल रूम दगी फंग बचेरोल की मतुंग इना हौजी हौजी इम्फाल की तोंगान तोंगान बा लंबी सिंग द ओइरिबा ट्राफिक अपडेट पिजरी नितायपा चुथे की ओइना पोस्ट ऑफिस अमदी वेस्टर्न गेट कंगला रूम दगी लाकपा गारी सिंग असी मयाई ओइरपने चिल्ली वेस्टर्न गेट कंगला की ओइनासु नितायपा चुथे अमदी फ्लाई ओवर रूम दगी लाकपा गारी सिंग असी मयाई ओइरपने चिल्ली कैसामपा जंक्शन की ओइना वहेंगबम लैकाई अमदी होदाम लेर क्रॉसिंग दगी लाकपा गारी सिंग असी मयाई ओइरपने चिल्ली मतांग असी दा ट्राफिक अपडेट पिजरबा लोइजरी

मोरांगी मचाई भीम थुबी नोंबाल इमिन कन फावयें जद्रिब थुबी नंग नंग सी चिंग नुंग मानंद पनबदी नो

0: हेलो, गुड इवनिंग.
1: गुड इवनिंग मैडम.
0: मिंग लाइफ हम हाइपियो.
1: अगदम आई डिस्टर्जित मोरांग मेल का जी नहीं.
0: लम्बा
1: मैं की मेल का जी है मैं आम मोरांग मेल का जी कराई देने हैं.
0: कोई
1: कोई दो तंजिंग की खुबम जी को नुम नुम चुकांग बात चला कोई मोरांग मेल का जी तो ले जब ने है वो कुन थम देगी मैडम.
0: अदो मोरांग मेल का जी वो कोई की संदूक चली बा एफएम की थोरम सिंग देखा चैनल की थोरम सिंग पुनः मक्सी बुद्ध मैं एक सेंग ने ताब फंग भी ब्रा.
1: दाम मरक मरक ता खरा sing da bsi yaw ye do anam mena de do magic sing da dum ta de ye da
0: hoi hoi ado kai sai ta bi ga dei no hai bi yo
1: dam ta khan ring ai da ni dam tu sa bi kai khun ne ri
0: ta ram nok chari
1: ado ga ai na sai ti ma mi sam ni tlem gi kwa
0: da
1: pai tam song do dum ha kan ta de ye na tau jira pa ni
0: fani fani
1: ado sai ti bu ta wa yaw da ba
0: pai
1: ni ani ka tang khoi la ga de ge hap de ge ai khoi na ma ma ga na कौदेव सवन खेन कंतु छिन
0: होय
1: अनुगा अमना मयंग मम ओंबी चंदजिनी अमना खोजी लेखा कुमोंबी अमचना हाइलन मयंग सियान न पाय यौ दबर जियोदा
0: अदो इसाई से फोन इन प्रोग्राम खतमक सरुक या बिब्रा इखोगी एसएमएस थादुना मसुंग पोस्टकार्ड थादुने इसाई खनबगी अदुगुम थौरम गसु थमजई सिगुम बदि सरुक या बिब्रा
1: पोस्टकार्ड से मैडम मै थादरेनी अदुग थंगमन दिने को
0: होय
1: होय एजे पोस्टकार्ड तो लेयर के थंडर बने बको और क्लास में सुबंग पंग दबा आई के सुबंग लोक हट्टी दबा अदुला अदु मधी के कंग आई नेगर जीवन लोग रे अदुगा के ये तो पा लाइफ फॉलिंग दाय कोई की अक्षेल की प्रोग्राम में मार दुम ताज रे नाम को अते ये तो पा प्रोग्राम अन्न मन्न दिया दुम आई शरू गाजे हरो कम से कम देखे मिला
0: होय अदु सही सक पी की मिंग दिखंग भी ब्रो इसे ही सीगे
1: अच्छा सक पुछे मिदाम आई से मनसी खतंग आई का अकाउ वो वो इकरे
0: लक्ष्मी जीता सैसपी मिंगनी गिगी ना सैरंग आर के बीरेंद्र जीत सैरंग सोम की लम सिगे सोम की लमदम से खनबीर इब फिल्म सिगे चाब तारे फिल्म तो येजहब उजहब मोरंग माइक से नंब फिल्म उजहबे फनी फनी सैसे
1: मॉर्निंग वॉकिंग मॉर्निंग प्रोग्राम खोजी हलो वॉकिंग है ना तब बिरम बदो मिला मधु दवाई ये तुम बराबर ही शरू याद जरूर नहीं है तो हम जिससे मधु खुदों चार दब करी लाई दे देगी नो मधु मा अंदु के आइटम तुम मा कक रबरा सी वो पंजे का
0: होय होय एक होगी प्रोग्राम है बस इधी मतम की मतुं इन्ना अनो अनो वो पुछोक पा देगी दी हाना तोरम वो क्या तो की दब है बस ये तुम तो नहीं अदो करी मरम की नो है बदो सोम खंग भी निंग बलेगा दी मनी मिलागे खुथांग दा दुमक चिठी थाबी रख लगा हंग भी रखना भाई जगे
1: मैडम आई सो इतना ही चाय चौक रखे हम तक की आई ममांग दा याम ना चाय चौक रखी बने तो खुद भी रखता बुद्ध दा को
0: फनी फनी
1: मतम खेल दिया चलो
0: लाइबो फबो इमिनरसी हाइबो वफम जे थम जरगे दु इसे से खुदोल थम जगे पुना तामिनस
1: थैंक यू मैडम मुसु सारबो

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग मिंगले फ्रॉम हाई व्यू
1: गुड इवनिंग मैडम
0: होय मिंगले फ्रॉम हाई व्यू
1: आओ फोन तो करे गए कोई यानी तो ओ अंगली काय जगे लाइसेंस फोन दिया मदी लाइसेंस ले न दे दी तो दे ये ना
0: होय होय करम बेसे ताबी गनी हाई व्यू
1: मैडम सिरी बॉयटोन मां के आइबा फिल्म दी जगी कृष्ण मूर्ति मदी सुष्मिता आनी न संगी लगा लिरिक्स मदी म्यूजिक ना जिन ओइनाम न पीबनी सही शहुना लोग लुनु लोग तो होप कना दाइवन छै दो ताजन नि निजाम
0: फनी फनी इसई खुदोल सुसोई दन तौजगे ngasi gi aroiba color soi birabani dun isai se mate amtang ngang biram ga drop
1: au kachang ibai ni net soi na kitang ngang ge kome dang
0: fani fani how biro
1: Nogi nogi no to to kanada yenumi yendo namdan bak kanada nakin ma koishu aigun na londa hadu nu wadi do to kanada ho hadu nu me de namdan bak nakin ma koishu aigun na londa
0: इसे सु यम फजने सखपीर मे दि खुदोल तम जरेगे मयम पुने तामिनेसी
1: थैंक यू सो मच

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी उस मोहब्बत की जो शोर नहीं करती, बस दिल में कहीं चुपचाप रहती हैं, उस इंतजार की जिसमें शिकायत कम और अपनापन ज्यादा होता है, और उन यादों की जो कभी मुस्कुरा देती हैं तो कभी आंखों को थोड़ा नम भी कर जाती हैं। तो आइए इस खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं इन खूबसूरत गीतों के साथ।

दोस्तों कितनी अजीब बात है कि मोहब्बत अक्सर तब सबसे ज्यादा महसूस होती है जब कोई हमारे पास नहीं होता। कभी कभी एक ही शहर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत अगर सच में हो तो आवाजें नहीं बल्कि एहसास काम करते हैं। किसी की आदत, किसी की चुप्पी और किसी का अपना ख्याल रखना कहना दिल में बहुत देर तक ठहर जाता है। और शायद इश्क भी वही है, मोहब्बत भी वही है। इसलिए कार्यक्रम का अगला नगमा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

दोस्तों आपने गौर किया है कि इंतज़ार मोहब्बत का सबसे खामोश इम्तिहान होता है जिसमें कोई घंटी नहीं बजती कोई तारीख तय नहीं होती बस एक यकीन होता है कि शायद किसी मोड़ पर किसी रोज़ किसी शाम या फिर किसी रात वो आवाज़ फिर सुनाई देगी और यही उम्मीद दिल को टूटने से बचा लेती है। एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है कि मोहब्बत में सबसे मुश्किल काम किसी को भूलना नहीं बल्कि उसे याद रखते हुए मुस्कुराना होता है।

दूरी अगर मोहब्बत को कम कर देती तो शायद लोग यादें नहीं संभालते। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन दिल की आदतों से नहीं जाते। सुबह की चाय में, बारिश की बूंदों में, तो कभी पुराने गीतों में, या रात के वक्त जब सब सो जाते हैं और सिर्फ जब दिल जागता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग फिर से हमारी जिंदगी में चुपके से आ जाते हैं, कोई याद बनकर या कोई खामोशी बनकर।

दोस्तों, मोहब्बत हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी किसी को दूर से खुश देख पाने का सुकून भी मोहब्बत ही होता है। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दिल का भी और उन यादों का भी जो आपको थोड़ा बेहतर इंसान बनाती हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगला गीत तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure, including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isharani Barua. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपये से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टालो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपए के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: On this occasion, NDA adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आज मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू लेकर आई हूँ आपका प्रोग्राम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमें से की तरह शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ। किसी के दिल में बसना कुछ बुरा तो नहीं, किसी को दिल में बसाना कोई खता तो नहीं, गुनाह तो ये जमाने की

ऐसा भी इत्तेफाक मुझे बारह हुआ, ऐसा भी इत्तेफाक मुझे बारह हुआ कि मैं उनसे मिला हूँ, उनसे ही उनका पता पूछता हुआ।

यूं तो हजारों रास्ते हैं जिंदगी के सफर में, पर पता है सुकून सिर्फ तब मिलता है जब वो मेरा हाथ थाम कर कहती है कि हाँ चलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।

समय हुआ है 12:29 और 52 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू। लफ्ज कम पड़ जाते हैं मोहब्बत बताने में। जी हाँ, लफ्ज कम पड़ जाते हैं मोहब्बत बताने में। तुम जैसा कोई प्यारा भी तो नहीं इस जमाने में।

ना समझ थी ना कोई तजुर्बा था हमें, ना कोई समझ थी ना कोई तजुर्बा था हमें, बस एक चेहरा देखा और उसमें ही खो गए। वो पहली मोहब्बत का जादू ही ऐसा था कि बिना कुछ कहे हम उनके दीवाने हो गए।

कुछ कहे बिना तेरा मुस्कुराना मुझे आज भी याद है। नजरें मिलते ही तेरा पलकें झुकाना आज भी याद है। छूकर गुजरी थी जो हवा मेरे मन को, उस हवा का मुझे दीवाना बनाना आज भी याद है।

कुछ तो होगा तेरे मेरे बीच में, यूं ही बिना मिले दिलों के तार नहीं छिड़ते। कुछ तो होगा तेरे मेरे बीच में, यूं ही बिना मिले दिलों के तार नहीं छिड़ते। पतझड़ में भी वक्त से पहले पत्ते शाखों से नहीं गिरते।

दोस्तों, समय हुआ है अब समाचारों का। 1:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। गीत सुहाने लेकर रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.4।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इन्नेस क्रेस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has assured that aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: On this occasion, the NDA adopted a resolution lauding Prime Minister Modi for achieving this historic feat. BJP President Nitin Narwin said that 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Wishes are pouring in from across the world as Prime Minister Modi becomes India's longest-serving elected Prime Minister. Several world leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Canadian Prime Minister Mark Carney and South Korean President Lee Jae-myung congratulated Mr. Modi and praised his leadership and contributions to India's growth and global standing. US President Donald Trump described Prime Minister Modi as a great one. Hailing Prime Minister Modi as the doyen of all Indian Prime Ministers, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said, Russia hopes Mr. Modi will continue to strengthen India-Russia relations. Mr. Modi has thanked world leaders for their warm wishes and congratulatory messages. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. Lok Sabha Speaker Om Birla has said that Parliament is not merely a platform for lawmaking but the highest expression of the aspirations, expectations and concerns of the people. He said an association with Parliament provides a unique opportunity to understand the functioning of the Indian democracy. Mr. Birla made the remarks while interacting with IAS officer trainees of the 2024 batch under the Assistant Secretaries Program at the Parliament House. India and Tajikistan have reaffirmed their commitment to deepen their partnership and strengthen industrial, trade and economic cooperation at the 12th meeting of the India-Tajikistan Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation. Commerce Secretary Rajesh Agarwal stressed the need to translate political goodwill and historical ties into stronger economic outcomes through greater focus on trade, investment and market access. India has condemned the attack on the commercial vessel Setabelo off the coast of Oman. The Ministry of External Affairs said that of the 24 Indian crew members on board, 21 have been rescued so far, while 3 are reportedly missing. The Indian Embassy in Oman said it is closely monitoring the situation and is in close contact with the local authorities. Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship and Education, Jayant Chaudhary, has flagged off a contingent of 14 skilled Indian workers departing for Mauritius under the government-to-government labour mobility framework between India and Mauritius. Speaking on the occasion, Mr. Chaudhary said India's skilled workforce is increasingly being recognised globally for its talent, professionalism and adaptability. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma have advanced to the second round of the women's singles event at the Australian Open in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन अल्फाज के साथ कि ये सुहाना समा और हवाओं का रुख कुछ कहता है, ये सुहाना समा और हवाओं का रुख कुछ कहता है कि हर पल इस दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है।

धड़कनें बढ़ रही हैं और दिल बेकरार है। धड़कनें बढ़ रही हैं और दिल बेकरार है। अब आ भी जा कि सिर्फ तेरा ही इंतजार है।

ढूंढता है दिल अब बस थोड़ी सी खामोशी, ढूंढता है दिल अब बस थोड़ी सी खामोशी, ले चलो वहां जहां बस सुकून का हो नूर।

जब तक तुम साथ हो तो कोई गम नहीं, जब तक तुम साथ हो तो कोई गम नहीं, बस दुआ है कि कहीं भटको नहीं राहों में।

जब से देखा है तुम्हें कोई और चेहरा भाता नहीं, जब से देखा है तुम्हें कोई और चेहरा भाता नहीं, मेरी आंखों का नूर और मेरी दुनिया भी तुम्हारे ही बीच समाई।

तेरे बगैर सूनी पड़ी है ये राहें और खामोश है ये दिल, तेरे बगैर सूनी पड़ी है ये राहें और खामोश है ये दिल। तुम्हें नहीं पता कि तुमसे ही महकेगा मेरा घर आंगन और हर एक महफिल।

जमाने से छुपा कर दिल में बसाया है तुम्हें, जमाने से छुपा कर दिल में बसाया है तुम्हें, एक बार देखो तो सही कि हम भी तुम्हारे प्यार के काबिल हैं।

तारा जहां भूल बैठे हम उस एक ही पल में, सारा जहां भूल बैठे हम एक उस एक ही पल में कि बस इतना ही याद है कि तुमसे निगाहें मिली थीं।

कुछ ही समय में होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार के दो प्रमुख ढांचा

0: परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tej gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: On this occasion, the NDA adopted a resolution lauding Prime Minister Modi for achieving this historic feat. BJP President Nitin Nabin said that 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Wishes are pouring in from across the world as Prime Minister Modi becomes the India's longest-serving elected Prime Minister. Several world leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Canadian Prime Minister Mark Carney, and South Korean President Lee Jae-myung congratulated Mr. Modi and praised him. US President Donald Trump described Prime Minister Modi as a great one. Mr. Modi has thanked world leaders for their warm wishes and congratulatory messages. The Defence Ministry has signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy. The project will have a minimum indigenous content of 75%. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met Bulgaria's Prime Minister Ruman Radev in Sofia yesterday. Dr. Jayashankar highlighted India's strong bilateral ties with Bulgaria and the opportunities arising from the growing India-Bulgaria strategic partnership. He also stressed the need for closer cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile global environment. He will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta Talks. Indian Railways has launched nationwide fire safety audits at railway stations to strengthen passenger safety. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas for improvement and to better

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 3 सेकेंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से आपके साथ साथ निभाने आ गई हूँ। अंजू बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और इस घंटे रहेंगे बहुत ही मधुर गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आंखों को नींद नहीं और दिल को करार नहीं, आंखों को नींद नहीं और दिल को करार नहीं, तुम इस कदर याद आकर हमें बहुत बेचैन करते हो।

पन्ने खुलते हैं जब भी इश्क और वफा के, पन्ने खुलते हैं जब भी इश्क और वफा के, और जब जिक्र मोहब्बत का होता है, यकीन मानो तुम बहुत याद

कुछ कहते हैं हमसे कि अभी उम्र देखकर थोड़े ही होती है ये मोहब्बत, अब इस नादान दिल को कौन समझाए कि अभी प्यार की उम्र नहीं है तुम्हारी।

दोस्तों सुरमई सुन रहे हैं आप और 2:31:19 अंजू है आपके साथ और ये सफर अभी और आधे घंटे का है, रहे मेरे साथ।

सजा ली है मैंने अपनी एक नई दुनिया उनके ख्यालों में, सजा ली है मैंने अपनी एक नई दुनिया उनके ख्यालों में। सुन माँ, सब छोड़ कर जाने को मन भागे है पिया की गलियों में।

कुछ इस कदर खोए रहते हैं हम तुम्हारी यादों में, कुछ इस कदर खोए रहते हैं हम तुम्हारी यादों में कि तुम्हारे बिना अब कोई नाम हमें याद ही नहीं रहता।

तुम देख लेना, चाहे बदल जाए ये सारा जहां, पर मेरा प्यार कभी ना बदलेगा। अब तेरे बिना जीना नहीं, और मरते दम तक और दिल धड़कने तक बस ही बस तुम्हारा ही रहेगा।

चलिए इनके गिले शिकवे तो चलते रहेंगे और अब हमारे भी चलने का वक्त आ गया है क्योंकि अर्चित पांडे आ गए हैं स्टूडियो में और कह रहे हैं भी अब जल्दी से सीट खाली करो। तो भाई मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगे अर्चित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मेरे यानी अर्चित के साथ।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, आज के इस प्यारे से गीत जिसके बोल है तुझे देखा तुझे चाहा।

मोहम्मद रफी जी और सुमन जी की आवाज में तुझे देखा तुझे चाहा। मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे। 3:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है। कोई अच्छा या बुरा हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें ज़रूरत है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा, और अगर हमें ज़रूरत ना हो तो वही बुरा लगता है। क्योंकि सूरज तो एक ही होता है, जो सर्दियों में तो हमें बहुत अच्छा और गर्मियों में कुछ कम अच्छा लगता है। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं 3:30 हो चुके हैं आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:36 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

कोई हो ना हो मेरे पास कोई हो ना हो मेरे पास पर ये रात तो है मेरे साथ दिन में बहुत शोर है पर ये रात है बहुत ही शांत हर कोई यहां सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है हर कोई यहां सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता वो बात भी कर लेता हूं इस रात के साथ क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ और आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्त यानी अर्चित के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही

आसा भोसले जी की आवाज में हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। 3:49 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

किसी चीज की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। किसी चीज की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए तो कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:55 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा, जिसे लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त अर्चित।

कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल है, जाइए आप कहाँ जाएंगे।

कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह बेकार नहीं होती है। बेकार से बेकार चीज भी कभी न कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है। घड़ी चाहे बंद ही क्यों न पड़ी हो, सारा दिन में एक बार सही समय जरूर बताती है। 4:25 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसको ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो घमंड न करना, जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो घमंड न करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा संभल कर चलना। 4:31 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही अच्छा सा गीत अभी अभी आपने सुना। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:37 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

एसटी बर्मन वॉज वेरी गेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पे बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

किशोर कुमार जी की आवाज में गाता रहे मेरा दिल। कोशिश यही कीजिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, कोशिश यही कीजिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 4:44 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो विश्वास अपने पैरों पर रखिए रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो विश्वास अपने पैरों पर रखिए जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते 4:55 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान

0: रखते हुए इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपए के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. In line with Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ, आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ, समझो जरा कहती है क्या।

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

जागना ही है हर दिन तो उम्मीद के साथ ही जागिए जागना ही है हर दिन तो उम्मीद के साथ ही जागिए निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे 5:17 हो चुके हैं सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी

हटे की धुंध तब सवेरा खिल कर आएगा, हटे की धुंध तब सवेरा खिल कर आएगा, कोहरा चाहे कितना भी गहरा हो, धूप आने पर छट ही जाएगा। निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, धीरे धीरे तैरते हुए किनारा मिल ही जाएगा। 5:24 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।